निर्धन को पले निर्धन को पले निर्धन को पले निर्धन को पले हाय हाय निर्धन को पले गुरु नानक दे प्यार विच कलगियां वाले दे प्यार विच इक वारी सारे आखो सतनाम अज पंजवां वीरवार है ये एक प्रकरण जो शुरू होया है खालसा करणी दा नाम है खालसा रहनी दा नाम है खालसा अमली जीवन दा नाम है खालसा गुणा दा नाम है उना गुणा विच्चों एक गुण खालसा सो निर्धन को पाले ते निर्धन नू पालना पांच तरह दा पहला चार तरह का आप जी ने चारे वीर बार सरवन कीता है केवल बोल के लंघ दे हां आज पंजवां निर्धन नू पालना महाराज जी सेवा लैन पहला निर्धन नू पालना दसवंद कढ़ना लोड़वंद दी बां फड़नी दूसरा निर्धन नू पालना के किसे दे औगण नू थोड़ा बर्दाश्त करके कलेश दा समा लंघा दे भी निर्धन नू पालना ए भी निर्धन नू पालना किसे दे औगण नू साध संग जी बर्दाश्त करके ते कलेश दा समा लंघा देना बड़ी बड़ी तप है तप बहुत बड़ा तप है तीसरा निर्धन नू पालना किसे दा हक ना मारना चौथा निर्धन नू पालना रसना नाल अपने नौकर नू अपने तो छोटे काम करने वाले नू घर दे बुजुर्ग नू रसना राई मिठे लफज बोलने वो भी निर्धन नू पालना है सत्संग आज पंजवां निर्धन नू पालना मेरे महाराज सच्चे पातशाह सेवा लैण एक बारी आओ सारे माई भाई बड़े प्यार दे नाल ए पंक्तियां बोलो फिर महाराज पंजवां निर्धन नू पालन दी सेवा लैण

गुरु की बाणी ते भरोसा होवे, सिदक होवे, प्यार होवे, तां लोक परलोक दे सुख बख्शदी है। जे श्रद्धा ना होवे तां कई वेरां गुरु की गोद विच बह के ही मनुख खाली उठ जाता है। नानक हुक्म ना मने ही सो घर ही बैठिया दूर, महाराज बख्शिश करदे हन गुरु ग्रंथ साहिब। जे हुक्म नहीं मनदे, नानक लेखा एक गल होर होमै, वो एक गल केड़ी है, अमृत वेले जाग के इशनान करके अपने मालक दा सिमरन करना, जपना श्री। महाराजा प्रताप सिंह जम्मू दे राजा, भगंदर दा फोड़ा निकल आया जेड़ा हड्डियां नूं भी सुराख कर जांदा है, एडा भयानक फोड़ा। सारे डॉक्टर हकीम जितने भी सन सब जवाब दे, ते राजे कोल एक दरोगा सी, ओ हर वेले सुखमनी साहब दा पाठ करदा हुंदा सी, ते राजे नूं बेनती करन लगा, महाराज जे हुक्म करो तो मैं बेनती करां, भई कदे गुरु नानक दे दर ते भी अरदास कीती है, कदे बाणी दा भी भरोसा ले सिदक, कदे बाणी दा भी आसरा लिया। आख्या सुभाग तां सुने, बड़ी उस्तत सुनी है, गुरु नानक दे दर तों कदे कोई खाली नहीं आउंदा।

कोई अश्वमेध यज्ञ करे अपने बराबर तोल के अपने वजन दे बराबर तोल के सोना चांदी दान कर लवे कोई प्राग दा इशनान कर लवे पर परमात्मा दे नाम दे बराबर नहीं पहुंच सकते जब सतनाम श्री

पर कमाल होगी तू कीमत नहीं जानदा, तू जानदा ही नहीं तेरी की कीमत है, कुछ भी नहीं। उस शरीर दी की कीमत है, कुछ भी नहीं, वो तो मिट्टी है। तू जानदा नहीं जब सतना

जे तू अपनी आत्मा नु गुरु शब्द दे आसरे बचा के लै गया, गुरु शब्द दा रंग आत्मा ते चढ़िया होया तेरे नाल जाए। सतनाम श्री पर गुरु शब्द दे आसरे, गुरु शब्द दी कमाई, गुरु शब्द दा रंग केड़ा है, गुरु शब्द दा रंग केड़ा है, नाम अमोला। सतनाम श्री बिन शब्द है नाम ना पावे कोई। आ गुरबाणी जब सतनाम गुरबाणी वर्ती जग अंतर इस बाणी ते हर नाम पाएदा। गुर प्रसाद गुरु दी कृपा द्वारा नाम दा रंग जप सतनाम श्री। आज सतगुरु कह रहे ने कैसा नाम अमोला है, इस नाम दे बराबर कोई नहीं पहुंच सकदा, इस नाम दे बराबर कोई यज्ञ कोई साधना होर नहीं पहुंच सकती। जब सतनाम श्री वाई कोट मदन कीनो इशनान, लाख अरब खरब दीनो दान, जा मन वसयो हर को नाम। जब सतनाम श्री वाई गुरु परमात्मा दे नाम दे बराबर कोई नहीं पहुंचता।

शास्त्र बसे मरती पेखे सर्व टटोल पूजस नाही हर हरे नानक नामे अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमरत वख्यान जोग अभ्यास कर्म तर्म किरिया सगल त्याग बन मदे फिरिया अनेक प्रकार किए वो जतना पुन दान हो में बो रतना शरीर कटाए हो मैं कर राती वर्तने में करे बो पाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे महा उदास तपी सुर थीवे अगन माहे होमत पुराण कनक असव हैवर भूम दान न्योली कर्म करे बो आसन जैन मार्ग संजम अत साधन निमख निमख कर सिर कटावे तो पी हो मैं मैल न जावे हर के नाम समसर कछ नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीर्थ दे छूटे गर्व गुमान न मनते हुटे सोच करे दिन सर रात मन की मैल न तनते जात इस देही को वो साधना करे मनते कबू न बिख्या टरे जल तो वह बोधे अनीत सुध कहा होए काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊंच नानक नाम उतरे पतत बहुमूच बहुत स्यानप जमका पौ व्यापै अनक जतन कर त्रिसन ना त्रापै एक अनेक अगन नहीं बुझे कोट पाव दरगे नहीं सीजे छूट स नाही उब प्याल मोह व्यापे माया जाल अवर करतूत सगली जम डाने गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोले सहज सुपाए चार पदार्थ जे को मागे साध जना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सद गावे जे को अपनी शोभा लोरे साध संग ए हो मैं छोरे जे को जन्म मरण ते डरे साध जना की सदनी परे जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा सगल पुरख में पुरख प्रधान साध संग जाका मिटे अभिमान आपस को जो जाने नीचा सू गनिये सब ते ऊंचा जाका मन हुए सगल की रीना हर हर नाम तिन कट कट जीना मन अपने ते बुरा मिटाना पेख है सगल शिष्ट साजना सुख दुख जन समदिष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेपा निर्तन को तन तेरो नाओ निथावे को नाओ तेरा थाओ निमाने को प्रभ तेरो मान सगल कटा को देवो दान करन करावन हार स्वामी सगल कटाके अंतर जामी अपनी गत मित जानो आपे आपन संग आप प्रभ राते तुमरी उस्तत तुमते हुए नानक अवर ना जान सकोए सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्दम में उद्दम फला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखान।

कीर्तन सिखियां इस गुण नूं अगां वंडना है। किसे कोल गुरबाणी कंठ है यह गुण वंडना है, गुरबाणी शुद्ध है यह गुण वंडना है। ये भी निर्धन नूं पालना है, अपने गुणा नूं अपने तक सीमित ना रखना, दूजे नूं वंडना। एक ते वधदा, एक आत्मा नूं खुशी हुंदी है कुछ देख। जेड़े कोई सूझवान बैठे होण, दास पहला शब्द जेड़ा लैंदा है ना वो उस गुण दे हिसाब नाल। पिछली बारी रसना दा सी ते शब्द लिया सी निर्मल रसना अमृत, अज जेड़ा ना जी गुण अर्पण करन दी ते शब्द लिया सब गुण तेरे मैं। आ सिख दा सुभाव है, जे गुण मिले भी ने ते तेरे ही ने। आखो सतनाम, इनू लाला गरीब नवाज लिखे। आओ थोड़ा जा होर अगे महाराज जी सेवा ले जान, एक बार ये पंक्तियां पढ़ो।

दूसरे पादशाह श्री गुरु अंगद देव जी महाराज का है। गुरु साहब जी कहते ने तिना दरियावां सियों दोस्ती मन मुख सच्चा नाम। दोस्त कहो जिहा बनाना चाहिए गुरु साहब जी दसदे ने कहंदे ने दोस्ती करनी है

एक ओ सज्जन जिनू कच्चा सज्जन कहंदे, कच्चा दोस्त जेड़ा चंगे पासे तू माड़ा पासे ले जाए, ओनू कहंदे ने कच्चा। कोई गुरुद्वारे, कोई मंदिर, कोई सत्संग जा रहे है ते रस्ते विच मिल पवे ते आखे छाड़ गुरुद्वारे मंदिर की जाने, आपा किधरे दूसरे पासे चलते। ओ कच्चा सज्जन, कच्चा दोस्त, पक्का सज्जन ओ जे कोई माड़े पासे जांदा होवे ओनू आखे छाड़ माड़ा पासा, चल आपा कीर्तन सुनी किसे चंगे महापुरुष कोल बैठ के रब दी गल सुनी। माड़े पासे तू जेड़ा मोड़े ओ पक्का सज्जन, पक्का।

वार मिल गए गढ़ शंकर दे विच इस जोगी ने टिंडोरा फिराया जेड़ा मेरे लंगर विचों प्रशादा शक्ति।

जोगी कहने लगा एक और फिर जाओ उसनु को मेरे लंगर विच आके प्रसादा छके मैं 10 साल का स्वर्ग देवांगा। जोगी दे चेले फिर पाए तिलकू दे घर गए बुआ खड़काया भाई तिलकू जी ने बुआ

अनेक शक्ति दा मालक है जेड़ा मेरे आखे नहीं लगदा, जो कि आसन ला के बह गया। रिधियां सिद्धियां प्राप्त सन, उन रिधियां सिद्धियां दे सदक

जाओ तिलकू नू फड़ के मेरे कोल ले आओ। ए पूत प्रेत जोगी ने जड़े छड़े पाए तिलकू दे घर वाल तुर पे। पाए तिलकू बुआ बंद है चौंकड़ा मारे है मन गुरु दे चरणा दे नाल जुड़े है ते जपजी साहब दा पाठ पै कर दे। इन्ने नू दरवाजा खड़के इस तरह लग्या जिवें कोई दरवाजा भन रहे है आवाजा आ रही ने।

तेरे गुरु दा तेन वास्ता बुआ ता खोल। गुरु दा वास्ता सुने पाई दिल को जी उठे उठ के बुआ खोले। गुरु दी गल ती गुरु दे प्यारे अपनिया जाना वार देंदे। गुरु दे चरणा तू कुर्बान हो।

तेरा गुरु केड़ा जिदे चरणा दे बदले तू स्वर्ग दी परवाह नहीं करता, जिदे चरणा दे नाल तू मन जोड़े है।

इस जोगी ने पाए दिल को दिनाल पाई, पाए दिल को गुरमुख है। जोगी ने भी तपस्या की थी पर मन रिधियां सिद्धियां विच लग गया। हुण पाए दिल को दिनाल दोस्ती की थी ते पाए दिल को रिधियां सिद्धियां दे रस्ते तू हटा के सच दे रस्ते वल लै तुरिया। इसे वास्ते सहबा ने कहा दोस्ती करनी उन्हां नाल।

नानक तिन सिंह क्या कीजै दोस्ती जे आप भुलाए करतार उन्हां नाल की दोस्ती करनी जिन्हां नूं परमेश्वर ने भी भुला दिता है। इस करके दोस्ती ओहदे नाल करो जिहड़ा

जो कि बड़ा हैरान कहन लगा मैं गुरु साहब दे मथे नहीं लगा। फिर लम्मे लम्मे मेरे वाल मेरे कोल रहण वाले चेलियां नूं भी ए पता नहीं कि मेरा कन कटिया होया। बड़ा हैरान है पर फिर कहन

लगदा भी कोई साधु ना एदा कोई अगे होना ना कोई पिछे। जे मर भी गया ता केड़ा किसने रोना है, इनू चुक के सुट दे। जदू सारे मेरे वाल देखन लग पे ते मैं समझ गया कि इना लोकां ने मैनू चुक के जरूर सुट देना। ओही गल हुई, सारे मेरे दुआले हो गए। पहला ते कहन लगे, साधु जी महाराज तुसी पानी च छाल मारो, बलि दिओ, संसार ते त्यागिया ही हुण शरीर ते आग ते साडी रखिया करो। मैं बथेरा रौला पाया पर उन्हां लोकां ने मैनू चुक के समुंदर दे विच सुट दिता। मैं ता किसे तरह बने लग गया पर मेरा ओ कान किसे मच्छी या किसे जंतु ने काट लिया। ओदे विच इक सोने दा मुंदरा भी सी। जदू इन्नी गल जोगी ने कही ता गुरु साहिबां ने कनात दे थल्यों हाथ दूसरे

पाए तिलकू जिनू गुरु ने अपने गल दे नाल आया वड्याई दिती निहाल हो गया जोगी भी हुण गुरु दे चरणा दे नाल जुड़ गया सारा संग सारिया दर्शन कीते कुछ दिन अमृतसर रह के पाए तिलकू ए जोगी इना सारिया लोकां दे नाल गुरु दी सिफत करदे होए वापस गढ़ शंकर नूं तुर पए वड्डी हूं वड्डा अपार तेरा मर्तबा रंग पुरंग अनेक न जापन करतबा ए अकाल पुरख तू बड़ा वड्डा है तेरे रंग कोई नहीं जान सकदा तेरा अंत कोई नहीं पा सकदा।

पूछा बादशाह, बड़ा आदमी कौन है जिसकी बहुत सी कारें हैं, जिसकी बहुत फैक्ट्री है, जिसके बहुत से बंगले हैं? नहीं, जो संगत के अंदर आकर अपने अहंकार को छोड़ता है वो ही सबसे बड़ा इंसान है।

प्यार नाल सुनियो की नहीं करदा कोई रचना बांझी रखी जाए पर कई दफा ऐसिया चीजा बंदिश दे विच आउंदियां गवैशी विच जिसनू बिखड़े टेढ़े ढंग नाल थोड़ा जा गाया जांदा है ते आम जिन्हां सजना जा भैणा नू ताल सुर दी समझ ना होवे ते कई दफा ऐसी बेरसी बेतालापन पैदा हुंदा है जिहदे नाल चीज दा समुचा रस माणिया जांदा है। सो मैनू इस गल की हार्दिक प्रसन्नता होएगी जे भैणा जां वीर लय सुर दे अंदर बोल सकन ते इस चीज नाल बोलन ते नहीं तां प्यार नाल सरवण करना इस शब्द दे विचों बहुत कुछ मिलना है।

0: खालसा जी आज सब तो पहला अमृत दे दाते सरबंस दानी कलगीधर पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा बख्शिया फतेह दा जयकारा बुलंद करो ते आखो गज के
1: वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

करे जिस अपनी ता नजरी सतगुरु पाया, नजर करे जिस अपनी ता नजरी सतगुरु पाया, तेजियो बहुते जन्म परम आता सतगुरु शब्द सुनाया, सतगुरु जीवन दाता को नहीं सब सुनो लोक सुभाया, सतगुरु मिली है सच पाया जिन विचों आप गवाया, जिन सचों सच बुझाया।

0: ने
1: सरदा मन की पूरे प्रभु मेरा अंतर जमी जान।
0: मेरा प्रभु, मेरा अकाल पुरख, मेरा वाहिगुरु निरंकार सब कुछ जानदा है। जीव दे मन अंदर की है, मनुख की चाहता है, मनुख की इच्छा की ये परमात्मा जानता है। जिदे अगे आप ये शीश नवाने ना वो जानता है कि मेरे गुरसिख की मन की भावना की वो चाहता की। प्रभु मेरा अंतर जामी जान, मेरा प्रभु जानता है अंदर की बुझ लेंदा है, देख लेंदा है कि अज गुरसिख कैसी मन अंदर भावना लेके आया, अज की मांग है, अज इसनू की चाहिए, जो भी चाहिए सतगुरु देंदा है। क्यों?

मानुक अब माने प्रभु मेरा अंत जामी जान। ओ प्रभु सब कुछ जान साहब आखदे ने जी की बिरथा होए सो गुरु पै अरदास कर। जे तेरे मन अंदर कोई भावनी है ना ते आके गुरु अगी अरदास कर, ओ गुरु भावनी पूरी कर देवे। खाली छोड़ी नहीं भेजेगा भर देवेगा, क्योंकि ये दरबार ही ऐसा है, इस दरबार अंदरों कोई खाली चोली नहीं गए। जो खाली चोली आए ने पर के गए ने, जो रोंदे आए ने हसते गए ने, इत दरबार ही ऐसा है। कौन खाली गए आप छोकर त्यास पक हो जरा। जे गुरु तेग बहादुर साहब दे दरबार अंदर शीश की मंग हुई तो शीश पेटा दे दिता गया है। ऐसा दरबार कोई सारा सरबंस कुर्बान कर दिता जावे, चोली विच दान पा दिता जावे, उस दाते दी दरबार च आए। जे असी खाली चोली चले जाइए कदी हो नहीं सकता। आओ निश्चय यकीन ते भरोसे दी नणमंग कर ली ते प्रभु कड़ा है प्रभु मेरा अंत जामी जान। तू करता सब किछ जानदा, गल भी करनी आउंदी होनी चाहिए, दान भी मंगना आउंदा होना चाहिए, दान मिल जांदा है। आके कही तू करता सब किछ जानदा, तू तो जानना परमात्मा मेनू की चाहिए, मेनू की लोड़ी दे, मेरे मन अंदर इच्छा की है, मेरी भावनी की है, तू परमात्मा जानना है, तेनू दसन की कोई जरूरत नहीं।

0: अमल कर, क्योंकि साहबा ने आखे अमल तो बिना रहा नहीं जाता, अमल कर।
1: अमल जे कीते दुनी विच डर गए आवे कम,
0: अमल कर। कैसा अमृत वेले उठ, नाम जप सिमरन कर, गुरु दरबार विच आ, ए अमल कीता तेरे दरगाह विच काम आवेगा, सफला होवेगा, ए तेरा अमल तेरी सहायता करेगा। ते असी भी ऐसा अमल करना है जिस अमल लई सतगुरां ने सानू बाणी विच उपदेश दिता है। आखदे ने बाबा मन मत मारो, नाम रस पीवे, नाम रूपी रस प्राप्त कर, ओ अमल पी जिड़ा अमल हमेशा ही चढ़िया रवे। सतगुरु नू कैसा अमल सी, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम दा अमल करिया करदे सन जिड़ा उतरदा ही नहीं सी, लैंदा ही नहीं सी, हर वक्त चढ़िया रहिंदा सी, अठे पैर रहिंदा सी। असी भी ऐसा अमल करना है।

सिमरन कैसा है? सैब आंख दे नी प्रभ के सिमरन कारज पूरे, ते मनुख चांदा है मेरे काम विच कदी विघन पवे ही ना, मेरे सामने कदी औकड़ आए ही ना, मैं कदी दुख दा सामना ना करा, ये साडे मन दी इच्छा है। ते साहब कहंदे ने जी तू ऐसी इच्छा रखना ना कि मैं दुखां दे विच ना पवां, एक कम कर, प्रभ कै सिमरन कार्य पूरा है, प्रभ कै सिमरन कबू ना चूर है, प्रभु दे सिमरन करन दे नाल सारे कार्य पूरे हो जांदे, ते जिन्हां ने प्रभु दा सिमरन कीता है उन्हां दे कार्य पूरे होए ने, जिहड़े सिमरन विच लग गए ने, जिहड़े नाम जपदे ने सिमरन करदे ने।

चूरे प्रभ के सिमरण कारज पूरे कारज पूरे। जिस नाम हृदय सोई वड राजा, नाम कितनी ऊंची दाद है। जिस नाम हृदय सोई वड राजा, जिस नाम हृदय से पूरे काजा। जिदे को नाम है ना संसार तो सब तो वड्डा राजा हुई, जिदे को नाम है इस पूरे काजा उदे कार्य भी सारे पूरे हो जाते ने। ते नाल ए भी कहा गया है कह कबीर निर्धन है सोई जा कह हिरदे नाम ना होई। ओ ते निर्धन है जिदे को नाम नहीं, जिदे को सिमरन नहीं, जिदे को नाम है सिमरन है वह राजा है, वो कार्य भी पूरे ने।

साहिब श्री गुरु नानक पातशाह दा उच्चारण की जिस शब्द अंदर सतगुरु जी सानू जोत दी पहचान दसते ने, पर तुसी तको साहिबां दा इतिहास पढ़ के कि साहिबां नू बचपन विच ही कितनी लगन सी। कहिंदे ने जदों बच्चियां नाल खेलदे प्रभु भगती दीआं गल्लां करदे ते बच्चे कठे हो के सतगुर दे इर्द गिर्द बह जांदे, साहिब जी सानू भी उस मालिक दीआं गल्लां सुनाओ। कहिंदे ने सारा सारा दिन बीत जाना, उन्हां बच्चियां ने सतगुर दे मुखो मिठे मिठे बोल सुन के अपने घर जाना भी भुल जाना। जिस वेले रात पैनी सतगुरु जी ने भैन जी नूं बेनती करनी, भैन जी ना ता मेरा चित करदा कि इन्हां बच्चियां तो दूर होवां ते ना ये बच्चे मेथों दूर हुंदे ने, ते तुसी किरपा करो रात दा भोजन असी कठे ही छकांगे कठे ही खावांगे, तुसी इन्हां लई भी भोजन तैयार कर लो। सो कहण तो भाव सतगुरु ने केवल ये बचन आख्या नहीं, पहले बचन नूं कमाया कि सब अंदर परमात्मा दी जोत नूं वेखण। छोटे छोटे बाल जो नगर दे विच रहण वाले ने ओह जे घर विच आ के बह गए ने ते इको जगह बैठ के प्रसाद छकना है, किसी प्रकार का कोई पिन पेत नहीं रखना। इसलिए साहब कहिंदे ने भाई आओ आपां जोत वेखीए,

रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कुमाते। किते लिखिया के सिख ही ना आवे? बिल्कुल नहीं। हर किसी ले, हर किसी नु आ जाए, कोई भी आवे, जेड़ा भी ना आवेगा अपनी कुलां दा उधार कर लवेगा। ऐसा हर बंदा। ते इस हरमंदर अंदर तुसी वेख लो सतगुरु जी ने किन्ना किन्ना आवाज दे के नहीं बुलाया। जिन्हों समाज ने दुरकारिया, जिन्हों मंदिरों कढ़िया, उन्हों हरमंदर बिठा दिता। नामदेव मंदिर भी चाह के बैठा सी, भगती करन लगा, धर्म दे ठेकेदारां चुक के बाहर मारिया। तू शूदर नीवी जात विचो मंदिर विच बह के भगती करने, बाहर कढ़ के सुट दिता। पर साध संगत ख्याल करना, नामदेव ने मंदिर दे पछवाड़े बह के भगती करनी शुरू कर दिती, दूजा मंदिर नहीं बनाया। ते साडे विच की हुंदा जे किसे प्रबंधक नूं एक गुरुद्वारों कढ़ दईए, दूजा गुरुद्वारा बना लैंदा। कहिंदा की होया तू मैनूं गुरुद्वारों कढ़िया, मैं एक होर गुरुद्वारा बना देंगा। पर नामदेव ने दूजा मंदिर नहीं बनाया। ओ मंदिर दे पिछवाड़े बह के कहन लगा, हे परमात्मा, मैं तेरा भगत, तेरी भगती करन आया, ते तेरे धर्म दे ठेकेदारां मैनू चुक के बाहर मारिया कि मैं नीवी जात विचों आ। इतना अन्याय मेरे नाल,

हे परमात्मा, मरण तो बाद मुक्ति किन्नी वेखी है, मुक्ति देनी आ ते जिउंदियां दे, जिउंदियां मुक्ति चाहीदी है मरण तो बाद नहीं। ते ए पंता ने जो मेरी बेपती कीती है मेरी नहीं तेरी है, क्योंकि मैं तेरी भगती करना आया मंदिर विच, इन्हां मैनू चुक के बाहर मारे है। कहिंदे ने अकाल पुरख कोलों बर्दाश्त

सो गुरु ने जोत दी पहचान कराई है। भाई जोत वेखो जात ना पुछ। ते साध संगत ए जो इस वेले प्रतख जोत एक मरतबा शीश नौती आखो तन गुरु ग्रंथ साहिब साडे सनमुख जग मगा रही है। हुण मैं एदा बचन तुहाडे समक्ष रखा क्योंकि मैं एक कीर्तन विच जिक्र कीता सी। मैं ए बचन तुहानू जरूर सुनावांगा। कहिंदे ने तन गुरु अर्जन साहिब दे मन अंदर एक ख्याल किवें उत्पन्न होया। एक दिवस

0: ने इन्ना ही उच्चारण किया। खैर,
1: जानो जोत ना पूछो जाती आगे जात ना है, सतगुरु ने इस आवाज नू बुलंद रखिया ते साध संगत देखो इस गुरु ग्रंथ साहिब अंदर किन्ने भगत विराजमान ने। 15 भगत, 11 पट, 4 सिख ते 6 गुरु साहिबान दी बाणी तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंदर मौजूद है। ते आपां गुरु दा हुक्म मनदे होए ख्याल करिए, जे गुरु ने जोत दी गल कीती है आपां जात क्यों पुछने, आपां क्यों ना जोत दी गल करिए। हुण अगे चलिए धन गुरु अर्जन साहिब तो बाद गुरु हरगोबिंद साहिब, गुरु हर राय साहब, गुरु हरकृष्ण साहब, गुरु तेग बहादुर साहब ते साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, जिन्हां ने अज फिर जोत दी गल करदे होए किया, जिमी जमान के बिखे समस्त एक जोत है, ना काट है ना बाट है, ना काट बाट होत है। गल जोत दी कीती। हुण मैं एक जिक्र तुहाडे समक्ष होर रखना चाहना, कई बार साडी जबान ते लफज आउंदे ने 10 गुरु साहिबान, ना भई साडा गुरु इको है। साडे गुरु दे स्वरूप जरूर 10 होए ने, लेकिन गुरु 10 नहीं हन, गुरु इको ही है। फिर असीं इत्थे कहिंदे आ 10 स्वरूपां दी प्रतख जोत शीस नौती आखो धन गुरु ग्रंथ, वह भी कोई है, क्योंकि बाणी गुरु गुरु है, बाणी विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन माने, प्रतख गुरु निसारे। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं प्रतख गुरु जानो, क्योंकि शब्द गुरु है, इत्थे दे गुरु नहीं आखिया। जद गुरु नानक पातशाह अगे सवाल होया सी तुसी गुरु हो, ते गुरु नानक पातशाह ने भी नहीं आख्या कि मैं गुरु। इसलिए गुरु शब्द है, आपां शब्द नू गुरु मनना है, इस वास्ते साडा गुरु इको है। कलगीधर पातशाह कहिंदे ने गुरु केड़ा है, आद अंत एकै अवतारा सोई गुरु समझियो। वो जोत दी गल करदे ने। हुण जिस वेले जोत दी गल कीती ते वेखो पंजां प्यारियां दी साजना करदे होए साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, जोत वेखदे ने जात नहीं, जोत वेखदे ने। दया राम आए ने, शीस मंगिया दया राम आए ने, खैमे विच लै गए ने, गुलामी दी गर्दन नू कट के फिर बाहर आउंदे ने, एक शीस होर चाहीदा है। दया तो बाद धर्मचंद जी आ जांदे ने, जिस वेले धर्मचंद जी आ जांदे ने सतगुरु कहिंदे ने हे अकाल पुरख इतनी तेरी कृपा, दया नाल तुसी धर्म भेजे है, हुण धर्म तो बाद लोड की है, हिम्मत दी। हिम्मत राय जी आ जांदे ने, हिम्मत तो बाद लोड की है मोकम चंद जी, जिस वेले मोकम चंद जी आउंदे ने सतगुरु होर खुश हुंदे ने। दया नूं धर्म मिलिया, धर्म नूं हिम्मत मिली, हिम्मत नूं मोकम पक्कापन मिलिया। कहिंदे ने हे अकाल पुरख एक शीस होर चाहीदा पर देवी ओही होई। कहिंदे ने फिर कौन आया, साहिब चंद जी। जदों साहिब चंद जी आए ना सतगुरु कहिंदे ने वाह अकाल पुरख तेरे पंथ दी साजना जिहड़ी कीती है पंचायत बड़ी सुंदर है, क्योंकि सब तो पहले दया, सब तो पहले दया। गुरु नानक पातशाह ने कुछ मंगे है ते दया मंगी है। मैं कल इसका जिक्र तुहाडे समक्ष रखांगा, पहले दया फिर धर्म फिर हिम्मत फिर मोकम पक्के सॉल्ट, फिर कहने मैं इन्हां नूं सहबी देना चाहना। खालसे पंथ नूं गुरु ने सहबी बख्शी है, ते भाई सहबी ती उन्हूं मिलनी है, जिहड़ा गुरु दी सरन विच आ जाए उन्हूं सहबी मिल जांदी, वो साहब हो जाता है जिहड़ा गुरु दी सरन विच एक बार आ गया। हुण उत्थे गुरु ने जात वेखी है नहीं, जोत, पन्ना प्यारियां दी साधना कीती, जोत वेखी है, जात नहीं पुछी कि तेरी जात की है। पंचायत ऐसी बना दित्ती, पंज प्यारे ऐसे बना दित्ते, कहन लगे मेरे पंज प्यारे ने, इतना वड्डा मान अपने साहबजादियां तो पहले अरदास विच ना दे दित्ता। पंज प्यारे चार साहबजादे किस लई, क्योंकि गुरु ने जोत दी पहचान कीती है, जोत दी साधना कीती है, ते अमृत दी दात इसलिए वंडी सी कि असी सारे एक हो जाइए। जिस वेले अमृत तैयार होया माता जी ने पतासे आप आए, ते कलगीधर पातशाह बड़े खुश हुए,